ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म। आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ, गुरूकुल टिकापुर, कैलाली।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुक्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ जुनी देठ सक्कु प्राणी हुक्र आपन आपन जीविका मा देखठ वसा का बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढाई क्लाक भक्खर गौरी ओर लै जाइदल ओह ब्याला मा सुशर्मा का नेतृत्व मा गई कौरा हुक नक्सेना हुक्र सक्कु गैया हुक्र खेदर का लै जाइ लगल बर्कीमार बटकोही।

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओकझुम्रा नाच। कार्यक्रम होइन मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: हेलो बहिनी, कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सिजी कम्पनीको वाइवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान्त 60 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
6: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
5: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सिजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाइवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाइवाई सिजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
6: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली, सञ्चालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
7: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: थ्री इन वन के साथ।
1: आई
0: लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट थ्री इन वन परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दू। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

बर्किमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार क व्याख्या सहित का गायन मनैनहक जिन्दगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ जुनी देछ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविका मनेको छ वसक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चहाइक लाख भक्खर गौरी ओर लै जाइतल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कौरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर लैदै लग्ल बर्किमार बटकोही बाचन उग्र

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओक झुम्रा नाच। कार्यक्रम होइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। कैलाली में दशैं लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू। जिला के 12 स्थान में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना। 1146 प्रहरी परिचालन। टीकापुर में बाल समृद्धि के क्षेत्र में काम करना संघ संस्थाओं के बीच परिचयात्मक कार्यक्रम। बाल समृद्धि के लिए सहकार्य आवश्यक रहल में जोर। जानकी गांव पालिका में बर्कीमार सुन्ना सुनैना कार्यक्रम शुरू। कार्यक्रम 3 दिन सम्म चलना। विकास और संघीयता सुदृढ़ीकरण में मुख्यमंत्री उक्रन के साझा प्रतिबद्धता। आप पूरा खबर। बाल समृद्धि और एकीकृत विकास के लग हाटेमालो परियोजना से टीकापुर नगर पालिका क्षेत्र में करतिरलक काम के बारे में जानकारी और परियोजना परिचयात्मक बैठक हुई बा। टीकापुर में ओलविजन इंटरनेशनल नेपाल के सहयोग में विकास के लग युवा एकेबद्धता या ढनगढ़ी डिगो विकास समाज भजनी उबाल कल्याण संघ टीकापुर से हाटेमालो परियोजना मार्फत काम करती बा। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागरजी पालिका हुकन संगे सहकारी करके आगे बढ़लक में धन्यवाद देती। तरक क्षेत्र के वाड़ा मकेल कार्यक्रम संचालन रलक ओर से सक्कु वाड़ा में कार्यक्रम कर देना आग्रह करल बाटे। वार्ड नंबर 7 के वाड़ा अध्यक्ष एज्ञे प्रसाद न्यूपानी से लम्बा समय से तरक क्षेत्र के वाड़ा में काम करती रलक बतोई थी। बाल बालिका किसान के क्षेत्र में रलक काम मजा रलक बतोई थी। हरेक वर्ष समन्वयकारी भूमिका में अपना हुकरण संगे कर्तिरलक बतोईटी ऐना दिन माफे बजट लाने बेर पालिका संगे समेत समन्वय आवश्यक रलक बतोईले बाटे। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी ओड से कार्यक्रम करबेर समन्वय आवश्यक रलक बतोईले बाटे। वहां आगामी दिन में करना कार्य के बारे में जानकारी करैटी। प्रतिफल में ध्यान देना ओ काम करना सुझाव देले बाटे। महिला बाल बालिका शाखा प्रमुख संगीता शाह बाल मैत्री स्थानीय शासन ओ बाल विवाह मुक्त प्रदेश अभियान में प्रदेश सरकार रलकमा एमना सहयोग करना मेरके बजेट समेत रलक ओर से एमना काम करना बटोईले बाटे। बाल कल्याण संघ टीकापुर के कार्यक्रम संयोजक राधिका गिरी परियोजना से टीकापुर के 6, 7, 8, 9 में काम करती रलक ओर से बाल कल्याण संघ से 1 वर्ष में 33,130 जहान हे सेवा देहल बतोईले बाटे। दिगो विकास समाज भजनी के बजार संयोजक विनोद शाह संस्था के परियोजना मार्फत समुदाय में आधारित 9 थो संस्था हो। 9 थो सहकारी 244 थो समूह में काम करती रलक हो। सहकारी में 3,648 शेयर सदस्य रलक। समुदाय में आधारित संस्था में 4,232 घरधुरी समेत आबद्ध रहल जानकारी कैले बाटे। वहां परियोजना से पोषण बगैचा हरियाली प्रवर्धन जीविकोपार्जन के लग तालीम तथा सहयोग वित्तीय साक्षरता महिला कार्यबोझ घटना में सहयोग लगायत के काम करते रलक बतोई थी। टीकापुर में जम्मा बजेट 51,50,000 में काम करना बतोईले बाटे। वहां स्थानीय पालिका संगे समन्वय करके जीविकोपार्जन में सहयोग पुगैना कार्यक्रम रहल बतोईले बाटे। यार्ड धनगढ़ी के सामाजिक परिचालक रतनलाल चौधरी ई आगे टीकापुर के 6-7 म पढ़ाई शिविर संचालन दिवक खाजामा मेनू निर्माण म सहजीकरण करलक बाल बालिका हुकरण के स्वास्थ्य परीक्षण करतीरलक जानकारी देले बाटे। वहां ई वर्ष बाल संवाद बाल बालिका हुकरण के स्वास्थ्य परीक्षण पोषण खाना उपभोग के बारे में जानकारी देना किचन गार्डन पोषण और बाल मैत्री स्थानीय शासन संबंधी कार्यक्रम लगायत के रहल बतोईटी। टीकापुर में 16,34,500 बजेट रलक जानकारी दिए बाटे। टीकापुर नगरपालिका के इंजीनियर नवराज जोशी संघ संस्था शाखा प्रमुख अमृता रावल कृषि शाखा प्रमुख तो बहादुर विष्ट लगायत से सुझाव दिए बाटे। बाल कल्याण संघ के अध्यक्ष धनबहादुर बीका के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम संचालन कौशिल्ला चौधरी कर रहे। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बाल कल्याण संघ के मूल्यांकन अधिकृत हरिप्रसाद जोशी कर रहे। जानकी गांवपालिका में बर्कीमार सुन्ना सुनैना कार्यक्रम शुरू करगिल बा। जानकी गांवपालिका के आयोजन में हुईलक कार्यक्रम में काली से शुरू हुईलक बतागिलवा। कार्यक्रम के उद्घाटन करती गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी बर्किमार के संरक्षण हुए कहना उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजन करलक बटोले बाटे। अध्यक्ष चौधरी जानकी गांवपालिका थारू संस्कृति और संस्कार के संरक्षण केलक तमाम खाल के कार्यक्रम संचालन करती अलक बटोले बाटे। वहां तीन दिन सम संचालन हुना कार्यक्रम में मुख्य वाचक चन्द्र प्रसाद चौधरी, वाचक जगु प्रसाद चौधरी, जगबीर चौधरी रहल बाटे। कलशे सोम देवन दौरा मुख्य व्याख्याकार रहल बाटे। पहिल दिन बर्किमार के तीन थो पैधार गाइलबा सोम देवन दौरा जानकारी दिले बाटे। ये कार्यक्रम में 32 थो पैधार गैनर वहां बटोले बाटे। वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष कमल महतो से स्वागत करल कार्यक्रम संचालन नेत्रा प्रसाद जयसी करल रहें। खोजखर में एक घड़ी विश्राम, विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बनने लागो तो
2: बैला भागने जा बंदी अब तो था पाव दे चु सब समा बनी घर में सकी न सकी सभी काम करने पर जा तो कार्य उन सा अपनी काम करने विदेश जानु आजा के करने के न करने के लिए था जाना तो जन्म पड़े जैसे लाचा
1: जिस्तो राम्रो पढ़ने मेरो साथी बाल विवाह गरेरा आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुबे अन्योल मा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: विश्राम पासे फिर से स्वागत बा। ई बेला नेपाली उक्रेन के महान पर्व विजया दशमी हमार घर अंगनामा आसेकल बा। ई समय में घर छोड़ के काम के सिलसिला में देश बाहर देश के तमाम भाग में रलक नागरिक घर लौटना कार्यक्रम हुई बा। वह हमारे और समय से फिर ई बेला मनई सकु ठाउँ बुआ चहल पहल फे ढेर हुई नकल बा। ऐसी की मनई के चहल पहल बढ़ना रलक वर्ष सुरक्षा चुनौती फे बढ़ती रहल बतागिल बा। विकास साझेदारी सुदृढ़ बनैती संघीयता कार्यान्वयन प्रदेश सरकार के अधिकार के पूर्णता प्रयोग और समेत सुनिश्चितता विकास के लक्ष्य मुख्यमंत्री उक्रेन के साझा प्रतिबद्धता व्यक्त करगिलवा। विराटनगर में काली खोइल संपन्न मुख्यमंत्री सम्मेलन में सहभागी प्रदेश मुख्यमंत्री उक्रेन से संघीय सरकार संगे प्रदेश के अधिकार कार्यान्वयन के लक आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार करना प्रतिबद्धता जनैले बाटे। सम्मेलन में संघीयता कार्यान्वयन तथा संविधान प्रदाता प्रमुख अधिकार के पूर्ण प्रयोग करना जिम्मेवारी में स्पष्ट और बाकी अधिकार हस्तांतरण के विषय में संघीय सरकार समक्ष साझा धारणा समेत प्रस्तुत करना निर्णय करवा। एक अलग संघीय कानून निर्माण तथा संशोधन कार्य विस्तृतकरण के पुनरावलोकन और प्रशासनिक संघीयता के प्रभावकारी कार्यान्वयन हे प्राथमिकता धरगिलवा। प्रदेश प्रहरी साफ प्रशासन प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शांति सुरक्षा संघीय कार्यालय संपत्ति दायित्व समेत अभिलेखीकरण हस्तांतरण करके प्रशासनिक दोहरोपना हटैना वित्तीय संघीयता के प्रभावकारी कार्यान्वयन और प्राकृतिक स्रोत के बाँटफाट के विषय है साझा प्रतिबद्धता में समेत गिलवा। अंतर प्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकास आयोजना और कार्यक्रम के तहगत समेत स्पष्टता जग्गा प्राप्ति तथा उपभोग वन क्षेत्र के उपयोग और कानूनी प्रावधान में शैक्षिक संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन में देगिल नीतिगत तथा कानूनी जटिलता समाधान करना फिर संघीय सरकार समक्ष विषय वस्तु प्रस्तुत करना जनासेकलवा। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता उक्रेन के सहभागिता रहल रह। मुख्यमंत्री से साझा प्रतिबद्धता पत्र हाली प्रधानमंत्री समक्ष बुझैना बटवागिल बा। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदीय दलके दुई जाने सांसद थुक्रान स्पष्टीकरण पुछलबा बुधबार बैठल सांसदीय दलके बैठक से पदमन से राजीनामा देलक वीरबहादुर थापाओ धर्मराज पाठके स्पष्टीकरण पुछना निर्णय करलबा बैठकमा सहभागी सांसदके अनुसार दुनू जाने 48 घण्टा भित्र जवाब पेश गर्के स्पष्टीकरण पुछना निर्णय करलबा उसँग पाठकके सामाजिक विकास समितिके सभापतिके जिम्मेवारी खोज गिल्बा कलसे उहाँ सभापति मनसे फिर्ता बोलेना निर्णय करलबा एमाले से मंगलबार के प्रदेश सभा के बैठक में अनिवार्य उपस्थित हुके बजेट के पक्ष में मतदान करना हुई जारी कर रहा मनो पाठक को थापा भर बैठक में सहभागिता नहीं मिल रहा थापा मंगलबार नई बजेट प्रति असंतुष्ट जनाईी सांसद पद से राजीनामा दई सकल बात नहीं कलश्य वहां के राजीनामा में सभामुख भीमबहादुर भंडारी होल्ड करलक बतागिल्बा खोज खबरमा एक घरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछक फेर सैबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकाप्रे एफएम।
5: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
7: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। नेपाल मन से मनसून पूरा रूप में बाहर गेल बा। मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से असोज 28 गते ई वर्षा के मनसून नेपाल से सक्कू भूभाग से बाहर जा सकलक जानकारी दिल बा। ई वर्ष असोज 17 गते से लेके नई पश्चिमी तथा उत्तरी कुछ भूभाग में मनसून बाहर शुरू हुई रह। सामान्यतया नेपाल मनसून 13 जून से लेके शुरू होके 2 अक्टूबर सम्म रहना बा। समेत मनो ई वर्षा 19 अर्थात समेत असार 5 में मनसून भित्राइल रह कलसे सरदर मिति से फिर 12 दिन पाछे मनसून बाहर गैलक हो। ई वर्षा नेपाल मन से मनसून बाहर जैना सरदर मिति की अवधि में सरदर वर्षा रहल बावे कलसे यद्यपि भूगोल अनुसार वर्षा के मात्राओ समेत प्रतिशत फरक बा। तराई पहाड़ के तुलना में हिमालय क्षेत्र में ढेर वर्षा समेत हुई बा। मौसमविद के अनुसार नेपाल मनसे मनसून पूरा रूप में बाहर गईल ओ आगामी कुछ दिनसम मौसम गमाइलो हुईना कहलबा। पहाड़ी भेग में एक दुई स्थान में छुटपुट पानी पर्न संभावना रहलसफेन। समग्र दशैं में मौसम गमाइलो हुईना पूर्वानुमान करलबा। ओ सरकारी सेवा है डिजिटल ओ नागरिक मैत्री बनाईना उद्देश्य धरके सरकार से आपसे नागरिक उपकरण के चाहल स्थानमा नेपाल दूर संचार कम्पनी नेपाल टेलिकम के सिम कार्ड उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएल बा। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तेमेलसेना मन्त्रालय मनसे हुलाक सिम सेवा के शुभारम्भ समेत करगिल बा। यी सेवा संचालनमा आयल संगे नागरिक हुक्रा टेलिकम के सिम कार्ड लेना दूर संचार कार्यालय पुगे पर्न नै हो। यी सेवा मार्फत ग्राहक हुक्रा अनलाइन आवेदन दैके आफन नयाँ प्रिपेड समेत फिजिकल सिम कार्ड समेत हुलाक मार्फत घर दैलोमा प्राप्त गर्न सक्ने बाटै नागरिक हुक्रा अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत विवरण हो लगेके ठेगाना फोटो नागरिकता वा राहदानी के समेत फोटो संगे लगेके टेलिकम के काउन्टर छनौट करके आवेदन पेश गरे पर्न बा। टेलिकम से कागजात जाँच ओ आवेदन स्वीकृत हुई पासे अनलाइन मनसे भुक्तानी गर्न सक्ने बा। सिम के लाग 90 रूपया हुलाक डेलिभरी के लाग 70 रूपया शुल्क लग्न बा। उक्त रकम जोनसुकी बैंकिंग एप वा डिजिटल समेत पोर्टल वा नमस्ते पे मनसे समेत भुक्तानी गर्न सक्ने बताइल बा। ओकर पाछे सेवा ग्राहक र नजिक के हुलाक कार्यालयमा से समेत सिम पठैना कहलबा। ऊ सिम कहाँ पुगैना कहना बारेमा समेत ट्रैकिंग कर सकना व्यवस्था करगिल बा। हुलाक कर्मचारी से सेवा के समेत घरीमा सिम पुगा देना रहलबा। यह समाचार संगे खोज खबर वाइल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। कैलालीमा दशैं लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू। जिल्ला के 12 स्थान में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना 1146 प्रहरी परिचालन। टीकापुर में बाल समृद्धि के क्षेत्र में काम करने संघ संस्थाओं का बीच परिचयात्मक कार्यक्रम। बाल समृद्धि के लाख सहकारी आवश्यक रहल में जोड़। जानकी गांवपालिका में बर्कीमार सुन्ना सुनैना कार्यक्रम शुरू। कार्यक्रम 3 दिन समय चलना ओ विकास ओ संघीयता सुदृढ़ीकरण में मुख्यमंत्री उपकरण के साझा प्रतिबद्धता। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका पर्यटन सुनतिर भी राम राम।

0: को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबी में लगने संपूर्ण साइज का टायर सुपथ मूल्य में पाइन संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमराफारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
1: संपर्क नंबर 091-560-470 र मोबाइल नंबर 98-4857-1828
2: अनि भाई स्टुडेन्ट
3: हुन त हो दाइ के गर्ने यहाँ घण्टा नहाने गाह्रो रहेछ
2: घण्टा त मैले पनि धेरै हाने भाइ जीवनमा तर जिन्दगीले नै आफूलाई घण्टा हानेको पत्तै भएन।

0: तथा छठ पर्व को अवसर में यहां सब को सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शांति समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
1: नवरात साउंड रामारोशन गांव पालिका वडा नंबर 1 क्षेत्र नंबर 1 अछाम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन।

0: होन्डा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौ। स्क्रैच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनीवन स्कीम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्रैच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होन्डा साथ अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होन्डा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा, शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुर 2 राजीपुर कैलाली।
2: कॉफी रेडी।
3: वाओ, थैंक यू। यो सांसलाई अच्छे सुगंधित बनाउँछु मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ।
4: आई लव द सेंट।
3: आई लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
4: मंगलदीप Saint 3-in-1 Perfume Like Fragrance।
5: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
6: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

बर्किमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाग जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हुक्र चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव झुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा देख छ वसाक बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढाइक लाग भक्खर गौरी ओर लै जाइ दल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कोराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर क लै जाइ लगल बर्किमार बटकोही बाचक हुँ र

0: बढ़ाद तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक तथा देश विदेश में रहन् भागी दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं। जीवन साइकिल स्टोर टीकापुर में बाल बालिका देखि वृद्ध सम्म का लागि उपयुक्त विभिन्न डिजाइन का आकर्षक साइकिल साइकिल का पार्ट पुर्जा पाइने का साथ ही मरमर संभाल को सुविधा उपलब्ध छ। गुणस्तरीय सामान भरपर्दो सेवा र ग्राहक को सन्तुष्टि नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले साइकिल किन्न होस् वा मरमर गर्न एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।
1: संचालक राजेश कुमार चौधरी, जीवन साइकिल स्टोर, ब्लक नंबर 14 टीकापुर सुधार केन्द्र को लाइन, संपर्क नंबर 9810 61 53।
2: हिन्दूहरूको महान पर्व बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलरी, माइली तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेन्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चौक, टीकापुर, कैलाली। संचालक प्रकाश भण्डारी, सम्पर्क नम्बर 9848531695।
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: घर त जेनटेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठभन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
3: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: हेलो बहिनी, कता हो? तिमीलाई थाहा छ कि नै, सीजी कम्पनीको वाइवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी रूपान्तरण 60 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
5: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
4: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाइवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाइवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
1: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14, पार्क रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट। सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
6: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जइबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417।
3: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय टिकापुर 4 बागमारा, प्रधानाध्यापक रघुनाथ उपाध्याय।
9: कफी रेडी।

0: बढ़ार सहित खास शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में संपूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिंतक तथा देश विदेश में रहन् भाई दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं। जीवन साइकल स्टोर टीकापुर में बाल बालिका देखि वृद्ध सम्म का लागि उपयुक्त विभिन्न डिजाइन का आकर्षक साइकल साइकल का पार्ट पुर्जा पाइन का साथ ही मरमर संभाल को सुविधा उपलब्ध छ। गुणस्तरीय सामान भरपर्दो सेवा र ग्राहक को संतुष्टि नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले साइकल किन्न होस् वा मरमर गर्न एक पटक सेवा को मौका अवश्य दिनुहोला।
1: संचालक राजेश कुमार चौधरी, जीवन साइकल स्टोर, ब्लक नंबर 14 टीकापुर सुधार केन्द्र को लाइन, संपर्क नंबर 9810

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार क व्याख्या सहित का गायन मनैन जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कत्रा सजीव बा बिहान के बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौवा जुनी देछ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविकामा देखछ वसाक बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चढाइक लाग भक्खर गौरी ओर्लै जाइदल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गैल कौराहुक नक्सेना होक्र सक्कु गैया होक्र खेदर्क लैदै लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र

कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगरहुवा, ओकछुम्रा नाच। कार्यक्रम हुइना मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

0: सुरक्षित जीवन जीउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: कफी रेडी।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइ दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाइम।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, दंडीफोर, दाग, खुजली, हुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगला दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: अरेल्ला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन् एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
5: अरेल्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि सञ्चालक खुमराज सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98102635-47।
6: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो
7: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
8: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपथ मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
6: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
8: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
9: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
6: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
10: हामी कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
8: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: हिन्दूहरूको महान पर्व बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
3: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
2: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
3: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
2: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
3: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095 43893।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजेक 5 बजेक थारू भाषा खोज खबर में अपना स्वागत बा खोज खबर से मैं गीता चौधरी राम राम अपनौकरा बस सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो में फिर सुन्दी रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका 8 नम्बर ओडा में कालो पत्रे करगिलक सदर उपकल घास उखेल्टी निर्माण कंपनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय के डीन मन सह प्राध्यापक डाक्टर नाथुराम चौधरी नियुक्त ओ इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर में जनशक्ति के अभाव 5 पालिका हां सीमित जनशक्ति के सेवा देवेर जनशक्ति से सेवा देवेर कठिन हुई रलक कार्यालय प्रमुख के कहाई कैलालीके टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित अर्नहुवा जैना सड़कमा कालोपत्रे गुणस्तरीय निहुल्पा छ। सड़कमा हुइलक घाँस उखार लगाइल्बा। गैलक आर्थिक वर्षमा कालोपत्रेके लागि तयार करगिलक सड़क आजकाल कालोपत्रे करबेर उपगिल्बा। वडाध्यक्ष दीर्घ बहादुर ठकुला सड़कमा जमलक घाँस उखार ओ ढूर सफा कर्क कलह कालोपत्रे कर्णाकलक सेफे मजासी सफा निकरबेर कालोपत्रे उपगिलक बटुलबाट। स्थानीय सड़क निर्माण के गुणस्तरीय उपर प्रश्न उठेटी भिडियो सार्वजनिक सञ्जाल में डारल्पा छ। ओडाध्यक्ष सहित के समन्वय में पुनः सफा कर काम कर कैगिल्बा। प्रदेश सरकार के 20 लाख रूपया बजेट मन 3 मीटर सड़क निर्माण हुईटी रहल्बा। सड़क मन घास बाकी रहलक अवस्था में कालो पत्रे कैगिल रह। वर्षा या सड़क के बेस छुट्टिया गिला खुला सेफे वर्षा के कारण समयमा कालोपत्रे करगिल निरह। लम्मा समयसम्म बेस खुल्ला रहबेर घाँस जमलको निर्माण कम्पनी श्रमिक लगाक घाँस हटैना काम करलसेफे कुछ ठाउँमा न घाँस बाँकी रहलक अवस्थामा कालोपत्रे कैगिल रह। अपना निगरानी कर्ती रहलको कालोपत्रे गुणस्तरीय बनैनामन बनाइपनामा ओडाध्यक्ष ठकुलाके कहाइबा। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकै शिक्षा शास्त्र संकायकै डीनमा सहप्राध्यापक डाक्टर नाथुराम चौधरी नियुक्त हुइलबाट। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदकै 2083 साल असोज 28 गते बैठक से पदाधिकारी सिफारिश समिति के सिफारिश के आधार में खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से वहां रिक्त रहलक विभिन्न संकाय के डीन केन्द्र के निर्देशक तथा केन्द्रीय कैंपस के प्रिंसिपल पद मन लौ पदाधिकारी नियुक्त हुईलबाट। शिक्षा शास्त्र संकाय में डीन नियुक्त सह प्राध्यापक चौधरी विगत 22 वर्ष ठेसे टीकापुर बहुमुखी कैंपस में अध्यापन कर्तीबाट ईस्याघ विश्वविद्यालय के अनिवार्य विषयगत समिति के अध्यक्ष होक पाठ्यक्रम निर्माण में संलग्न रह। विश्वविद्यालय के विभिन्न तह के पुस्तक लेखन व सहलेखन करलक डाक्टर चौधरी के संस्कृति शिक्षण विधि के विषय मन राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल मन अनुसन्धानात्मक लेखन प्रकाशित बाटिन। डीन नियुक्त हुइना और संकायमा व्यवस्थापन संकायकी सहप्राध्यापक डाक्टर शिवप्रसाद सापकोटा, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डीन मन सहप्राध्यापक डाक्टर प्रेमसिंह साउट, स्वास्थ्य विज्ञान संकायमा सहप्राध्यापक डाक्टर डबल बहादुर धामी, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भट्ट नियुक्त हुइलबाट। वस्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रकी निर्देशक मन सह प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र राज जोशी, भाषा साहित्य तथा संस्कृति केन्द्र निर्देशकमा प्राध्यापक डाक्टर हरिशचन्द्र भट्ट तथा केन्द्रीय क्याम्पस प्रिन्सिपलमा डाक्टर दीपक चन्द्र भट्ट नियुक्त हुइलबाट। विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय के अनुसार विभिन्न संकाय केन्द्र व क्याम्पस के प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व के लागि नियुक्त हुइलखुइट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन केलाक आवश्यक प्रणाली सञ्चालन मना आइलबा। प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट सूचना प्रणाली पीएलएमबीआईएस खुल्लसँग बजेट कार्यान्वयन सुचारू हुइलक हो। मंगलबार पारित हुइलक प्रदेश के बजेट सम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रदेश प्रमुख नजीर मिया प्रमाणीकरण कर रह। बिहीबार ऊ विधेयक प्रदेश के आन्तरिक मामिला मन्त्रालय राजपत्र मन प्रकाशित कलक हो। राजपत्रमा प्रकाशन हुइल पाछ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रणाली सञ्चालनकै लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हन आग्रह कर्ल रह। महालेखा अर्थ मन्त्रालय से समन्वय करल पाछ पीएलएमबीआईएस सञ्चालनमा अइलख हो। वस्तक महालेखा नियन्त्रक कार्यालय एकल खाता प्रणाली समेत सुचारू कर सेक्लक प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी जानकारी दिलबाट प्रणाली सुचारू हिलपाछ सम्बन्धित कार्यालय भुक्तानी आदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हन दिह लागल बा। कर्मचारीनके खातामा तलब पठाई सुचारू करगिल बा। जोशी कल यी से आघ बुधबार नै प्रदेश के आर्थिक मामिला मन्त्रालय से बजेट कार्यान्वयनके लागि मार्गदर्शन जारी कैगिल रह। मन्त्रालय कर्मचारी के लौ तलब मान समेत सार्वजनिक कर सेक्लबा। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ओडावासी सेवा गरे शुभ इच्छुक शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: वडाध्यक्ष सुरेश कुमार चौधरी, जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वडा कार्यालय परिवार, दुर्गौली कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
5: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423059।
6: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्चना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
6: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
7: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
6: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
7: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805543893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत भए। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा सेवा गराएकी चाप अनुसार जनसंघ टिके अभाव बा टीकापुर लम्कीचोहा भजनी नगरपालिका व जानकी जोशीपुर गाउँपालिका कैक पाँच थो पालिका सेवा दिएपना कार्यालयमा न जनशक्ति अभाव हुल्पा छ सेवा दिए समस्या पर्लखो। इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुइबेर पाँच जना नायब सुब्बाके दरबन्दी हुइलक मन पाँच छ कटौतीमा पर्कन दुई जना कलह कार्यरतबाट उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहलक इहे कार्यालय मन दुई जना शाखा अधिकृत हुइपर्ना मन एकजना कलहक रहलको कार्यरत शाखा अधिकृत फे स्वैच्छिक अवकाश लेखन जैना हुइल्पा छ झन समस्या हुइल्बा। कार्यालय प्रमुख तारानाथ पनेरू धुर जनसंख्या हुइलक पाँच पालिका सीमित जनशक्ति सेवा दिए कठिन हुइलक बटुइलबाट। इलाका प्रशासन कार्यालय मन नागरिकता बनैना दैनिक 150 जत्रा, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाई 200 जना जत्रा, पासपोर्ट बनाई 30 जनजाति व राष्ट्रिय परिचय पत्र सुधार कना व अन्य काम कैखन 50 जना जत्रा ऐना कलक कार्यालय के तथ्यांक मनबा। दशैं के बेला भारत गैलको विभिन्न काम से बाहर गैलक मनै घर घुम्ना हुइलक वर्षे सेवा गराइके चाप आमिन बरहलबा। तत्काल जनशक्ति नै ठपकन सेवा गराइहन समस्या हुइना सेवा लिहक लागि इलाका प्रशासन कार्यालयमा ऐना हुइलक शिक्षक गणेश ओझा बटुइलबाट। कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुइलक विषय मन्त्रालय जानकारी कराशेक्लको हली व्यवस्थापन हुइनामा आशावादी हुइलक कार्यालय प्रमुख पनेरुके कहाइबा। यहाँ दुईजना अधिकृत, दुईजना सुब्बा व एकजना कम्प्युटर अपरेटर आवश्यक रहलक पनेरु बटुइलबाट। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय टीकापुरमा 113 जना प्रहरी जवान दीक्षित हुइलबाट। शिक्षालयमा सञ्चालन हुइलक सी नम्बर 239 छ। सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सम्पन्न कलक 113 जहनहन सशस्त्र प्रहरी नायब उप महानिरीक्षक दिपेन्द्र कुंवर दीक्षित हुइलक हुइट। तालिम सम्पन्न कलक सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित कति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्र कुंवर देश ओ जनताहन शिरमन ढर्क सशस्त्र प्रहरीके अनुशासनमा रहक काम गर लौ प्रहरी जवान हुक निर्देशन देलबाट। 2082 साल मंगसिर 15 गते से शुरू करगिलक तालिम 120 जन परीक्षार्थी हुक्र भर्ना हुइल रहल। हुक्र मध्ये दुई जन बिचमन तालिम छोलक छ जहन गर्मी मन तालिम कर निसेकन बेहोश हुइल्पा छ अनेन्द्र सार्गिलक ओ एकजना अन्य ठाउँ से लानल्पा छ। अब 113 जहन हन दीक्षित करगिलक तालिम शिक्षालय जानकारी देलबा। दीक्षित समारोह सम्बोधन समारोह समापन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालय टीकापुरके प्रमुख सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक महेश केसी तालिममा सहभागी होक दीक्षित हुइलक प्रहरी जवान हन गैलक कार्यक्षेत्रमा न तालिम मन सिक्लक बाठा पालना गर्क काम गर निर्देशन देलबाट। दीक्षान्त समारोहमा टीकापुर नगरपालिकाके कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नकाजी, जानकी गाउँपालिकाके अध्यक्ष गणेश चौधरी लगायतके सहभागिता रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश मन बजेट कार्यान्वयन केलाक आवश्यक प्रणाली सञ्चालन मन आइलबा। प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट सूचना प्रणाली पीएलआईएस खुललकेसँग बजेट कार्यान्वयन सुचारू हुइलक हो। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम, विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
10: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
9: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा कर टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्रफे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
11: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
12: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
13: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
14: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
13: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
14: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
13: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
0: खोज खबर म फेर स्वागत बा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसे इन्डोनेसिया के गैर आवासीय राजदूत लिस्ट युवती शिष्टाचार भेटवार्ता कलबाट मन्त्रालयमा आज हुइलक भेटवार्ता मन्त्री खनाल नेपालकै लागि इन्डोनेसियाकै गैर आवासीय राजदूतकै रूपमा नियुक्त हुइलक मन राजदूत लिस्ट युवती हन बधाई देती उहाँकै सफल कार्यकालकै शुभकामना व्यक्त कलबाट भेटकै अवसर मन दुनू पक्ष नेपाल इन्डोनेसिया बीच रहती ऐलक मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहयोग हन थप सुदृढ बनैना विषयमा छलफल करल हुइलक परराष्ट्र मन्त्रालय जनैलबा नेपाली कांग्रेसकै 15 महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय कार्य समिति चयनकै लागि हुइतिरलक मतगणनाकै सम्पूर्ण परिणाम आज रातगण सार्वजनिक हुइना हुइल्बा निर्वाचन समितिकै सदस्य सचिव राजु बटुवाल आज रातसम्म सक्कु पदकै परिणाम आचेक्न जानकारी देलबाट कांग्रेसकै लौ नेतृत्व चयनकै लागि सभापति उपसभापति महामन्त्री व सहमहामन्त्री पदकै मतगणना सम्पन्न होसेक्लबा अब केन्द्रीय सदस्यकै विभिन्न समूहकै मतगणना जारी बा निर्वाचन समिति मतगणना तीव्रता दिहेलकै संग बागी परिणाम समेत आज सार्वजनिक गर्न तयारी करगिलक जनागिल बा समितिमा गगन कुमार थापा निर्वाचित होसेक्लबाट थापा 6584 मत प्राप्त गरेर उहाँकै प्रतिस्पर्धी रामकृष्ण खड्की 375 मत प्राप्त गरल सभापति पदकै निर्वाचनमा 60013 मत खसल रह यो समाचारकै सँग खोज खबर ओराइल अन्तिम जैति खबरकै मुख्य शीर्षक फेर्से टिकापु नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा कालो पत्री करगिलक सड़क उपकल खास उखेल्टी निर्माण कम्पनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकै शिक्षा शास्त्र संकायकै डिम्म सह प्राध्यापक डाक्टर नाथुराम चौधरी नियुक्त ओ इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरमा जनशक्ति अभाव 5 पालिका सीमित जनशक्ति से सेवा देहबेर कठिन हुइटिरलक कार्यालय प्रमुख कहाई लिता थारू भाषा खोज खबर अत्रह और समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन्न सक्बे अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिदी मै गीताफी विदाई छु सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम
3: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण वडावासी सेवाग्राही शुभेच्छक शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: वडा अध्यक्ष भीमबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका 5 नम्बर वडा कार्यालय परिवार अमौरा कैलाली।
15: कर्मचारी आवश्यकता महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुरमा अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ। आवश्यक पदहरू ल्याब टेक्निसियन अथवा ल्याब असिस्टेन्ट, माग पद संख्या 1, फार्मेसी सहायक, माग पद संख्या 1, एचए अथवा अहेब, माग पद संख्या 1। सम्पर्क 9848637585, 9815680464, महापार्वती मेडिकल तथा जोशीपुर पोलिक्लिनिक जोशीपुर कैलाली।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनहक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हों चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान के पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौ जुनी देठ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मनेको छ वसा का बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओर लैजाइ डल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गैल कौराहुक नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटको ही

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हों चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गू प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी और दर्जनों सहायक गायक हों प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान के बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौव झुनी देछ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मा देख छ वसा का बैराग नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरुन चढाई क्लाक भक्कर गौरी ओर ले जाई डल ओह ब्याला मा सुशर्मा का नेतृत्व मा गैल कोरा हुक नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर का ले जाई लगल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र

0: कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखिया नाच, लठौवा नाच, मुंगडौवा, ओकझुम्रा नाच। कार्यक्रम होइन मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म। कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर। आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता समिति, सलाहकार समिति, कर्मचारी वर्ग, शुभ इच्छुक, शुभ चिंतक नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

0: कानपुर इंडस्ट्रीज संग जोड़ संपर्क नंबर 9864-26-60-22।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण गांवपालिकासी शुभेच्छुक शुभ चिंतक नेपाली दाजू भाई तथा दीदी बहनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करद।
2: गांवपालिका का अध्यक्ष गणेश चौधरी, उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया एवं जानकी गांवपालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय परिवार दुर्गौली कैलाली।
3: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण ग्राहक व्यापारी शुभ चिंतक दाजू भाई तथा दीदी बहनी सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। हाम्रो यहाँ दूध, दही, मही, घिउ, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम लगायत का विभिन्न प्रकार का आइटम पाइन्छ। लक्ष्मी आइसक्रीम एण्ड डेरी उद्योग, टीकापुर 1 बलभद्र चोक कैंपस रोड, संचालक मदन राज न्यूपानी, संपर्क नंबर 9848-49-97-84।
4: नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंले हामी सबैमा सुख शान्ति समृद्धि र आपसी सद्भाव कायम गरोस्। तिहारले हाम्रो जीवनमा उज्यालो र उमङ्ग ल्याओस् भने छठ पर्वले सबैको जीवनमा सुख शान्ति र उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान गरोस् भन्दै 2083 को बडा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा यहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायु सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
1: नवराज साउन्ड धामारोसन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 क्षेत्र नम्बर 1 अछाम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि।
2: विजय दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण ओडावासी सेवा गरी शुभेच्छुक शुभ चिंतक नेपाली दाजुभाइ तथा दीदी बहिनीलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
5: वडा अध्यक्ष ऋषि बिक, टीकापुर नगरपालिका 3 नंबर वडा कार्यालय परिवार रामपुर कैलाली।

बर्किमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार क व्याख्या सहित का गायन मनैना जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके पूर्व वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी होकन लौ जुनी देथ सक्कु प्राणी होकर आपन आपन जीविका मनेकोठ वर्षाका बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गुरुन चहाइक लाख भक्खर गौरी ओर लै जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्व म गैल कौरा हो नक्सेना होकर सक्कु गैया होकर खेदर लै जाइ लग्ल बर्किमार बटकोही वाचक हुँ र सोम देवन दौरा हो शेखर दही कार्यक्रमको थप आकर्षण थारू सांस्कृतिक सखियानाच लठौवा नाच मुंग्रहुवा ओक झुम्रा नाच कार्यक्रम होइन मिति 2083 साल असोज 28 गते से 30 गते सम्म कार्यक्रम स्थल श्री महेन्द्र शिशु माध्यमिक विद्यालय जानकी गाउँपालिका 6 धर्मापुर आयोजक जानकी गाउँपालिका कैलाली।

बर्कीमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैन जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हो क्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो क्र प्रकृति का रचना कत्रा सजीव बा बिहान टिके पूर्व

बर्किमार बत्कोही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्किमार का व्याख्या सहित का गायन मनैन जिनकी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बत्कोही बर्किमार गैना कार्यक्रम बर्किमार का गायक हूं क्र चंद्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगबीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हो प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदै छ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौ जुनी देठ सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा निकट वसाका बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक लाख भक्कर गौरी ओर लै जाइतल ओह ब्यालामा सुस्तरमा का नेतृत्वमा गैल कोरा हुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर लै जाइ लग्ल बर्किमार बटकोही।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण वडावासी सेवाग्राही शुभेच्छुक शुभ चिंतक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार कठरिया, जानकी गाउँपालिका 4 नम्बर वडा कार्यालय परिवार मुनुमा कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: महीने जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण वडावासी सेवाग्राही शुभेच्छुक शुभ चिंतक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
6: वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी, जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालय परिवार खैरी फाट कैलाली।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता समिति, सल्लाहकार समिति, कर्मचारी वर्ग, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष भीमबहादुर साउत तथा शिवशक्ति पाताबार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परिवार जानकी नौ कैलाली।
0: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: दाई बेड्ड भूख लाग्ता, खाजा बाँकी नै? ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
3: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसन ले छाइड भारी हो स्याकल बाजे। आप भलि भुवास कर दिए परल है, समय में भुवास कर दे से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पर्ना।
4: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह, छुट्टी में भुआस कर देख मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरिया नीच हटू दीदी। मई चाहे बाल विवाह कर नीच हटू, ये बाल विवाह निकरण दीदी।
5: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कह देना से दाई वो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत, ऊ हिंसा के शिकार बन सकत। वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस, ऊ रोजगार फिर नहीं पाए, ओ गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई, असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिवाना हुई सकत, ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता।
3: टिकापुर नगरपालिका ओडा नम्बर 3 से देगिलक जनहितमा जारी सन्देश।
6: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौ। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका ओडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ओडावासी सेवाग्राही शुभेच्छुक शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: ओडा अध्यक्ष इन्द्र चौधरी, जानकी गाउँपालिका 6 नम्बर ओडा कार्यालय परिवार, सुवर्णपुर कैलाली।
3: हिन्दू भगवानके महान पर्व बर्खा दशैं ओ शुभ दीपावली 2083 सालके पावन अवसरमे सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दादु भैया ओ दिदी बहिनी हुकनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्ती सदगैया झोला उद्योगमे तमान मेरके झोला सुपथ मूल्यमे पाजाइट, जस्ते स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायत के तमान डिजाइन के ब्याग अर्डर करल अनुसार बना जाइत ओ पुरान बिगड़ल झोला मरमत कर जाइत, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
4: रदगैया झोला उद्योग मुनवर रोड टीकापुर कैलाली, संचालक राम प्रसाद चौधरी।
5: बड़ा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक तथा देश विदेश में रहन भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एसएआर आर्ट एन्ड फिल्म सेन्टरमा फोटो, फोटोकपी, फोटो फ्रेम, छाप, विवाह कार्ड, मायाको चिनो, फ्ल्याग जस्ता विभिन्न प्रकारका ग्राफिक डिजाइनिङ र प्रिन्टिङ जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ।
6: एसएआर आर्ट्स एन्ड फिल्म सेन्टर, जानकी गाउँपालिका 1, दुर्गौली स्वास्थ्य चौकीको सिधा अगाडि। सञ्चालक राजेश चौधरी। फोन नम्बर 9848 9820।

बर्कीमार बतको ही वाचन थारू लोक महाकाव्य बर्कीमार का व्याख्या सहित का गायन मनैनाक जिंदगी माया प्रेम सद्भाव युद्ध नीति रणनीति राजनीति का समग्र बतको ही बर्कीमार गैना कार्यक्रम बर्कीमार का गायक हुक्र चन्द्र प्रसाद चौधरी जग्गु प्रसाद चौधरी जगवीर चौधरी ओ दर्जनौ सहायक गायक हुक्र प्रकृति का रचना कतरा सजीव बा बिहान टिके बुरु वर्षे सूरज भरार हुँदैछ आपन डडूर घामक तापले सक्कु प्राणी हुकन लौव जुनी देख सक्कु प्राणी हुक आपन आपन जीविकामा निकट वसाका बैराट नगर का सक्कु लाला बाला गैया गोरोन चढाइक्लाक भक्खर गौरी ओरलाई जाइटल ओह ब्यालामा सुशर्मा का नेतृत्वमा गैल कोराहुक नक्सेना हुक सक्कु गैया हुक खेदर्क लैजाइ लग्ल बर्कीमार बटकोही बाचक हुँ र

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता समिति, सलाहकार समिति, कर्मचारी वर्ग, शुभेच्छुक, शुभ चिन्तक, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष खड़ग धामी, सीतापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था परिवार, सीतापुर कैलाली।
2: Coffee ready.

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: हिन्दुकन के महान पर्व बर्क दशै ओडिया देवारी 2083 साल के पावन अवसर में सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभ चिन्तक ओ देश विदेश में रहल सबको नेपाली दादा भैया ओ दीदी बहिने हुक्रहन में सुख शांति समृद्धि ओ उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती कमल बाकस उद्योग में स्टील दराज बाकस ड्रम सुपट मूल्य में बिक्री कर जाइट।
3: कमल बाकस उद्योग टीकापुर 1 अस्पताल रोड टीकापुर कैलाली संचालक कमल चौधरी। संपर्क नंबर 98685 64 959 और 98156 68। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2083 साल को पावन अवसर में संपूर्ण गांवपालिका भाषी शुभेच्छुक शुभ चिंतक नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: गांवपालिका का अध्यक्ष गणेश चौधरी, उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया एवं जानकी गांवपालिका गांव कार्यपालिका को कार्यालय परिवार दुर्गौली कैलाली,

ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 को हार्दिक निमन्त्रणा। आदरणीय सज्जन वृन्द, वैदिक धर्म संस्कृति वेदाध्ययन तथा आध्यात्मिक चिन्तन प्रति श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ऋषिकवेद पारायण महायज्ञको पावन अवसरमा गरिमामय उपस्थिति तथा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। ऋषिकवेद पारायण महायज्ञ तथा वेदोपनिषद सप्ताह 2083 कार्तिक 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म। आयोजक श्री मल्लिका विद्यापीठ, गुरूकुल टिकापुर, कैलाली।

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।